0: स्टील यूपीवीसी एंड एल्युमिनियम हाउस नीलकंठा नगरपालिका वार्ड नंबर 3 धादिंग अस्पताल को पछाड़ी प्रोप्राइटर बीरबहादुर श्रेष्ठ संपर्क मोबाइल नंबर 9843057437।
1: रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ज।